0: Non-stop de allerbeste hits op Radio SBS.
1: फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना.

0: Dit is Radio SBS.
1: क्या हुआ?
2: वो तो
1: क्यूट है ना?
2: अरे पहलवान है,
1: पर तुमसे प्यार करती है।
2: हो नहीं सकता।
1: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
2: हो नहीं सकता।
1: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
2: ये हो नहीं सकता।
3: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरी श्याम।

हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब सलाम। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों आज बुधवार का दिन है, 30 तारीख सितंबर का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को ये दिन लाख लाख बधाई हो, मुबारक हो रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। घड़ी की ओर देखा जाए 7:00 प्रोग्राम में 4 मिनट व्यतीत हो चुका है, 4 मिनट ओवर 7। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 030-265-6560। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर 030-262-6611। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl। उसी वेबसाइट के जरिए हमारा प्रोग्राम अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए आप सुन सकते हैं। उसी वेबसाइट के जरिए भी आप मेल कर सकते हैं और रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है सुबह सुबह लो शिव का नाम। और ये सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये अति सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। 7:00 प्रोग्राम में 11 मिनट व्यतीत हो चुका है। बुधवार का दिन 23 तारीख या कहिए 30 तारीख सितंबर का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। 13 सितंबर का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सुन रहे हैं। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है और रेडियो SBS का एप नंबर 0332666611। चलिए प्रोग्राम में अगला भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। एक सुंदर सा गणेश जी का

गणेश जी का भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए जो अभी आपने सुना। हमारी सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है और खुद मोर्ख गुड मॉर्निंग कहा है, आप सभी को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। आज की भजन यात्रा प्रोग्राम में हम आपको ले चलेंगे कुमार विशु की ओर। उनकी खूबसूरत आवाज में ये सुंदर भजन आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

विशु की आवाज में सुंदर सा भजन प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए जरूर और जरूर सुनते ही रहना। एक भजन प्रोग्राम में पेश होगा, सुंदर सा भजन है, गणेश जी का भजन आज बुधवार की खास भजन यात्रा प्रोग्राम में।

राठौर की आवाज में सुंदर सा शिव जी का भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में 8 मिनट वैधित हो चुका है सुबह 7:30 में। प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है और ये प्रोग्राम हर सुबह आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक और हर शनिवार और रविवार 8 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। उसी वेबसाइट के जरिए भी आप मेल कर सकते हैं और रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। उसी वेबसाइट पर तरह तरह की खबरें होते हैं, रोजाना आपका दाह हॉरोस्कोप यानी कि ज्योतिष शास्त्र होता है और मौसमी समाचार के साथ और भी खबरें इसी वेबसाइट पर होता है। मत भूलना हमारा प्रोग्राम भी सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए सुनाई देता है और उसके साथ आपको खबर किया जा रहा है। डीएबी प्लस रेडियो के जरिए हॉलैंड देश के बीच में नीदरलैंड में और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में डीएबी प्लस रेडियो के जरिए हमारा ये प्रोग्राम अपना मोटरकार में अपना घरों में आप सुन सकते हैं। भजन यात्रा प्रोग्राम में हम आपको ले चलेंगे अनूप जलोटा जी की ओर, जिनके हृदय

भजन अनूप जलोथा जी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है, जो आहिस्ता आहिस्ता खत्म समाप्त होने पर आ रहा है। चलिए प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। सुंदर सा गणेश जी का आरती भजन आप सुनेंगे और पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से भी आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन। हमारी सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, और खासतौर पर सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

बाबू सुब्रियो और अलका जी की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गए। 8:00 प्रोग्राम में 7 मिनट वेटेड हो चुका है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। कुछ सुनने वालों बस स्टूडियो की ओर तार किया है। स्टूडियो का तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर 030-262-6611। बस शुक्रिया धन्यवाद आपके तार के लिए। और खबर मिला है कि आप नौकरी की ओर काम की ओर जा रहे हैं, 100 से 1000 वर्क्स और प्रोग्राम जरूर कोशिश कीजिए सुनने के लिए। कुमार सानू और अलका प्रोग्राम में होगा।

और अलका जी की आवाज में ये गाना पेश की गई है। सुबह की प्रोग्राम में खूबसूरत नख़्मे आप हर के लिए बस पेश किया जा रहा है। आसरा उम्मीद है सुनकर और काफी पसंद आते हैं। राहत फतेह अली खान प्रोग्राम में

रेडियो SBS के जरिए राहत जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है और रेडियो SBS का एप नंबर 030-262-6611। रेडियो SBS का वेबसाइट की जरिए भी आप ऐप कर सकते हैं। फिल्म पायल कुमार सानू एनल का

जी की आवाज में फिल्म पायल, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो उम्मीद है गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है आज बुधवार 30 तारीख सितंबर का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। परम सुंदरी फिल्म का गाना आपके बार पेश होगा सोनू निगम और कृष्णा कली की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है।

सभी सुनने वालों की सेवा में अनुराधा पोटवल एंड उदित नारायण। पापा द ग्रेट फिल्म का नाम था, उसी फिल्म से ये गाना बस पेश की गई। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है वेबसाइट radio.sbs.nl। उसी वेबसाइट पर रोजाना आपका दख हॉरोस्कोप होता है। सोनू निगम।

अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो वेस्ट में इसका प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। सुनने वालों आपकी हर एक काम काज के लिए फरमाइश हुआ इश्तिहारी जरूरी खबरें जो भी काम काज आपको पेश करवाना है हर एक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं टेलीफोन नंबर 03-265-65-60 या तो मेल कीजिए रेडियो SBS का वेबसाइट की जरिए उसी वेबसाइट की जरिए हमारा रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। एक बड़ी ही खूबसूरत गाना द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार सानू जी की आवाज में

कर प्रोग्राम में एक मिनट व्यतीत हो चुका है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज बुधवार का दिन 30 तारीख सितंबर का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। और आज का मौसम भी खूबसूरत सुहाना मौसम, गर्मी सा मौसम।

का मौसम भी होगा। यहाँ से हम आपको ले चलेंगे पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम की ओर, पुरानी नगमे जो बहुत सी सुनने वालों पसंद करते हैं। रेडियो SBS की जरिए हर सुबह गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ बस पेश किया जा रहा है और दुनिया की कोने कोने में सुनने वालों बस ये प्रोग्राम सुनते हैं। हर एक को खबर कीजिए ताकि हर एक को मालूम रहे पुरानी नगमे हर सुबह आप सभी सुनने वालों के लिए पेश किया जा रहा है। सबसे पहले आप सभी के लिए गर्मा गर्म कॉफी चाय पेश किया जा रहा है। तो चले यहाँ से प्रोग्राम में पहला पुरानी फिल्म का गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। पद्मश्री मोहम्मद रफी, मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुन वालो रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL और उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो की जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम सुनाई देता है और जिस तरह से भी आप सुनना चाहेंगे आप हमारा ये रेडियो SBS का प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। और बाकी हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी फरमाइश हुआ है इस तिहारे जरूरी खबरें रिक्लाम के लिए टेलीफोन नंबर है 03-25-65-65-60 या तो ईमेल कीजिए रेडियो SBS का वेबसाइट की जरिए। आपको खबर किया जा रहा है रेडियो SBS का कंतूर का टेलीफोन नंबर जो है 24 घंटा लगातार आप सभी के लिए होता है। और आपको भी खबर किया जा रहा है जरूर आप तार कीजिए हर एक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इन्फो लेने के लिए। लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में अबकी बार पेश किया जा रहा है। एक तू जो मिला तो सारी दुनिया मिली है। गाना जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है और वो भी लता मंगेशकर की आवाज में, लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

भास्कर की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आज की प्रोग्राम में जो अभी आपने सुना। हमारे सभी सुनने वालों को वेलकम कहा जा रहा है। जिन लोग प्रोग्राम को इस वक्त सुनते हैं और रोजाना की तरह आज भी बहुत सी सुनने वालों बस प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, किशोर कुमार एंड आशा प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं अब की बार फिल्म जवानी दीवानी, उसी खास फिल्म का गाना की ओर किशोर कुमार एंड आशा जी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

आज के प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए आज के प्रोग्राम में किशोर और आशा जी की आवाज में एक और खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है। अगली बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम यादों की बारात, सॉन्ग बाय किशोर एंड आशा।

खूबसूरत प्यार भरी गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई किशोर दाशा जी की आवाज में ओ मेरी सोनी। फिल्म यादों की बारात दूसरी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की ये प्रोग्राम में जो पेश की गई है। तो उसी सुनने वालों बस स्टूडियो की ओर तार कर रहे हैं, अपना अपना रिएक्शंस कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। टेलीफोन नंबर है स्टूडियो का 03-22-66-66-11। मुकेश और आशा प्रोग्राम में है, तुम्हारी कसम फिल्म का नाम है।

तुम्हारी कसम फिल्म का नाम आशा भोसले और मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले गाना आज की प्रोग्राम में किशोर एन आशा जी की आवाज में पेश किया जा रहा है और अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम है जुदाई। उसी फिल्म का ये गाना अब की बार आप सुनते ही रहना। 1980 का फिल्म है, फिल्म जुदाई, गाना जो अब की बार आप सुनेंगे मार गए मुझे तेरी जुदाई, सॉन्ग बाय किशोर कुमार एन आशा भोसले। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं।

शाह की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए मार गए मुझे तेरी जुड़ाई। खूबसूरत प्यार भरी गाने रेडियो SBS के जरिए बस आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले सुमन कल्याणपुर एंड मरहूम मोहम्मद रफी की ओर हम आपको ले चलते हैं। सुमन कल्याणपुर एंड मोहम्मद रफी।

0: सुमन कल्याणपुर एंड मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार मोहम्मद रफी की ओर हम आपको ले चलते हैं। एक बार फिर से मोहम्मद रफी प्रोग्राम में।
1: जब से आंखें हो गई तुमसे चार।

रेडियो SBS के जरिए मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 03265 65 60। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा आप तार कर सकते हैं। चले प्रोग्राम में आपकी बार ये गाना की ओर किशोर एन लता जी की आवाज में 03265 65 60। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा आप तार कर सकते हैं। चले प्रोग्राम में आपकी बार ये गाना की ओर किशोर एन लता जी की आवाज में

गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले आपकी बार गाना जो पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, एक गाना होगा एडो फिल्म अपने अपने, सुरेश वत्कर और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

और लता मंगेशकर की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो बैठे। गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए गाना और प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है एक और खूबसूरत पुरानी फिल्म का गीत आपकी सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। जरूर और जरूर सुनते ही रहना मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में। फिल्म का नाम जब प्यार किसी से होता है।

हसीना दो दीवाने फिल्म का नाम, दो कदम तुम भी चलो। रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में लता मंगेशकर और SP बालासुब्रमण्यम की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है। और अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम एक दूजे के लिए। गाना का बोल है हम बने तुम बने, बने हैं बस एक दूजे के लिए।

की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुन वालों की सेवा में। फिल्म का नाम था एक दूजे के लिए। हम बने तुम बने बस बने हैं एक दूजे के लिए। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है शहरुत्रे हॉलैंड से। ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में सालों से बस पेश किया जा रहा है। किशोर कुमार और अब की बार हम आपको ले चलेंगे फिल्म जमीर की ओर।

आशा जी की ओर हम आपको ले चलते हैं आशा भोसले की आवाज में ये गाना और फिल्म का नाम है जहरीला इंसान।

गाना जो प्रोग्राम में पेश की गए, फिल्म का नाम जहरीला इंसान। आशा जी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। आज के प्रोग्राम में जो पेश की गए सभी सुनने वालों की सेवा में, चलिए मोहम्मद रफी एंड लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं। मोहम्मद

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश की गई। फिल्म का नाम था सबक, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। एक बार फिर से मोहम्मद रफी की ओर हम आपको ले चलेंगे। अगली बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

द मैन विद एवरग्रीन वॉइस किशोर कुमार के आवाज में गाना भी आपने सुना। आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में महेंद्र कपूर एंड लता मंगेशकर की ओर हम आपको ले चलते हैं और फिल्म का नाम होगा

महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम था रूप तेरा मस्ताना। चलिए आज की प्रोग्राम में मुकेश और लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं।

और चंद्रानी मुखर्जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो उम्मीद है गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं फिल्म दारिंदा की ओर। यशुदास और कंचन की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

कीर्ति, कीर्ति, आखिर मैंने तुम्हें पाई लिया कीर्ति, मैंने तुम्हें पाई लिया। तुम नहीं जानती कीर्ति, तुम्हारे लिए मेरी आत्मा कितने सालों से भटक रही थी। तुम्हारे बगैर जिंदगी का एक एक पल ऐसे गुजरा है जैसे सदियां गुजर गई हों, हजारों साल बीत गए हों। लेकिन कीर्ति, अब तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई जुदा नहीं कर सकता।

2021 में रिलीज किया गया है। उसी फिल्म का गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार अदनान सामी और महालक्ष्मी आयर की आवाज में फिल्म खुशबू का गीत पेश किया जा रहा है। जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई है। सुनने वालों हर एक इंफॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60। मोहम्मद इरफान एट द फिल्म किक ये गाना पेश किया जा रहा है।

थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा से है बाकी। उदित नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पी।

सब ही सिद्ध वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति प्रोग्राम में।

मोहब्बत, कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति के बाद सोनू निगम एंड सुनिधि चौहान के आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है, पहली नजर का पहला प्यार। फिल्म का नाम उसी फिल्म का एक खूबसूरत सा गाना पेश किया जा रहा है सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में।

माफियार फिल्म का नाम सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई। अभिजीत की आवाज में आज के प्रोग्राम में एक और खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है फिर

गाना जो प्रोग्राम में पेश की गए अभिजीत की आवाज में अभी आपने सुना रेडियो SBS की जरिए, ये खास गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गए। एक गीत अब की बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है खासतौर पर उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में।

में ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा। उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गए आतिफ असलम और सुमेधा प्रोग्राम में।

खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। लाइव के जरिए प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में अलका जी के आवाज में आपकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

बेगम और खासतौर पर शरिया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। तो चले अब की बार आपकी सेवा में ये गाना पेश किया जा रहा है, अक्रूस फिल्म का नाम।

और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों चलिए आज की इस प्रोग्राम में गाना है जो फिल्म आंखों में तुम हो, कुमार सानू और अलका जी की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

जनाब उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं के आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। और आज का प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। कहीं प्यार ना हो जाए फिल्म का नाम, कमल खान, कुमार सानू, अलका, नितिन मुकेश और साथियों की आवाज में। और गाना का बोल है ओ प्रिया ओ प्रिया, कहीं प्यार ना हो जाए।

जुबिन एन नीति मोहन की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए 2-32-66-66-11 स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है। कहो ना प्यार है उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग प्रोग्राम में उदित नारायण और अलका जी की आवाज में।

ये फिल्म का टाइटल सॉन्ग बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। और चले अब की बार कुमार सानू एनाल का जी की ओर, किसी से तुम प्यार करो कहीं

पास में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL से वेबसाइट के जरिए भी अपना मोबाइल फोन के जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से कुमार सानू और अलका की ओर हम आपको ले चलते हैं। गाना जो अभी बार पेश होगा एक बड़ी ही खूबसूरत प्यार भरी गाना है।

कुमार सानू और अलका की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों आपकी फरमाइश हुआ इश्तिहारी जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर जो 4 बार एक बार होता है उस पर आप कार कीजिए और सभी इंफॉर्मेशन लीजिए 0302-65-65-60 पर या तो ईमेल कीजिए रेडियो SBS का वेबसाइट की जरिए। उदित नारायण और अनुराधा पोटवल, फिल्म का नाम कुछ दिल ने कहा, कुछ दिल ने कहा फिल्म का नाम।

दिल ने कहा फिल्म का नाम, एक फिल्म जो 2002 में रिलीज किया गया है और आप सभी सुनने वालों की सेवा में उदित नारायण और अनुराधा पोटवाल की आवाज में ये गाना पेश की गए है। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे, फिल्म का नाम कुछ कुछ होता है। एक बार फिर से उदित नारायण।

आवाज में गाना उस प्रोग्राम में पेश की गए। फिल्म का नाम कुछ कुछ होता है, उसी फिल्म का गीत उस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी सुनने वालों की सेवा में खूबसूरत नखमे प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। चले शान और संजीवानी की आवाज में ये गाना।

एक काफी प्यार भरी गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर की आवाज में। किशोर कुमार एंड लता ने फरमाया आज की प्रोग्राम में ये काफी प्यार भरी गाना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11 और अब की बार गाना होगा कितनी अकेली, सॉन्ग बाय द लेट लता मंगेशकर फ्रॉम

आवाज में ये गाना पेश की गई। फिल्म का नाम था तलाश कितनी अकेली। चले प्रोग्राम में मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: कहता है कि अब हम गए काम से, धड़कने लगता है।
1: खासतौर पर पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। हमारे बहुत से सुनने वालों बस प्रोग्राम इस वक्त फॉलो कर रहे हैं, सभी को वेलकम। और प्रोग्राम जहां जहां पर भी आप सभी सुनते हैं जरूर और जरूर सुनते ही रहना। तलत महमूद और लता मंगेशकर प्रोग्राम में।

रेडियो SBS की जरिए दलित महमूद और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। हेमंत कुमार और गीता दत्त की आवाज में आपकी बार ये गाना आप सुनते ही रहना। फिल्म का नाम है फैशन। फैशन फिल्म का नाम, उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है। हेमंत कुमार एंड

हेमंत कुमार एंड गीता दत्त की आवाज में ये गाना पेश की गए फैशन फिल्म का नाम था। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-66-11। अब की बार गाना जो पेश किया जा रहा है ओ सनम तेरे हो गए हैं हम, मोहम्मद रफी एंड लता।

रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl। आशा भोसले एन महेंद्र कपूर, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज में अबकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है। आज की इस खास प्रोग्राम में जरूर आप सुनते ही रहना, जबकि पुरानी नख में पुरानी फिल्मी गाने आप सभी के लिए बस पेश किया जा रहा है।

महेंद्र कपूर, महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। शहर उत्तरेख हॉलैंडी से ये प्रोग्राम बिल्कुल लाइव आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चलिए गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में पेश किया जा रहा है।

पद्मश्री मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। लता मंगेशकर की आवाज में एक और खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है और काफी पुरानी फिल्म का गीत होगा।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। चले अब की बार सुनील दत्त का एक खास फिल्म का गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं। फिल्म का नाम है मैं चुप रहूंगी। मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

पद्मश्री मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में लता मंगेशकर और बप्पी लहरी के आवाज में गाना आज के ये प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। बप्पी लहरी एंड लता मंगेशकर, खास तौर पर मिथुन का फिल्म है, फिल्म सुरक्षा, और गाना का बोल है दिल था अकेला अकेला। सभी हितनक में सभी खूबसूरत प्यार भरी गाने संगीत भरी रेडियो स्टेशन रेडियो SBS के जरिए हमेशा पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर एंड बब्बी लहरी की आवाज में ये गाना पेश की गई। फिल्म का नाम था सुरक्षा। चलिए प्रोग्राम में लता मंगेशकर एंड बब्बी लहरी की आवाज में ये गाना पेश की गई। फिल्म का नाम था सुरक्षा। चलिए प्रोग्राम में द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत महमूद।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता।
1: सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं था आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0302-65-65-60। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

रेडियो SBS के जरिए से आपने सुना शान और साधना सरगम की आवाज में कुछ ना कहो का टाइटल सॉन्ग, और अब आप सुनिए फिल्म रामलीला से अरिजीत सिंह की आवाज में लाल इश्क की मलहार।

कभी दिल के करीब, तुम्हें मेरे नसीब, यूं लाएंगे सोचा न था। बेहतरीन गाना आपने सुना संदेश सौंडलिया की आवाज में और साथ ही साथ साधना सरगम की आवाज में भी, फिल्म सोचा न था से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है, फिल्म हैरी मेट सेजल से।

तुम निकाह से आपने सुना, सलमा आगा की आवाज में दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में रेडियो SBS के जरिए से आप सुनिए। खुशियां और गम सहती हैं, फिर भी ये चुप रहती है, अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है।

0: मैंने कोई जादू नहीं किया, तू ही मेरे पीछे आया पिया आवाज अवैध फिल्म मुझे कुछ कहना है। दिल्ली तेज खजोर कुमार शानू एंड प्रीति अवैध फिल्म यादें कम तुत फोहत लीजिए फिया रेडियो SBS। जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले।
1: जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले। जब दिल मिले तब गुल खिले जब गुल खिले तब दिल मिले मिले मिले मिले मिले दिल मिले।

थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। बेहतरीन गाना आपने सुना अलका याचिक और उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म मैंने दिल तुझको दिया है से। तो अब आप सुनिए फिल्म शुभ मंगल सावधान से अरिजीत सिंह की आवाज़ में राख।

अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। इस सॉन्ग डोर लता मंगेशकर एंड कम्स आउट द फिल्म वक्त। गाँव द फेदर मैट आउट द फिल्म गुंजन सक्सेना। गजॉन्ग डोर रेखा भारद्वाज कॉम डोरी टूट गईया।

मेरे चंदा मेरे नन्हे, आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म आखिरी खत से, और अब आप सुनिए अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में। चौधवी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब।

खुशी जब भी तेरी मैं कम देखता हूँ, इस खजों दूर जुबेन नौटियाल दे दी दिस सो मोय ना ना जुबेन हाउ फेदर मैथ शफाकत अमानत अली एंड कैरलिजा ये रात ताल अ फिल्म कभी अलविदा ना कहना कौम तत लीजिए मितवा।

ये बेखुदी दीवानगी आउट द फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे एन खसाओ दूर जुबे नौटियाल कॉम्त होने लगा आउट द फिल्म एंथम।

गूंजी सी है सारी फिजा, जैसे बजती हो शहनाइयाँ। आओ ना क्वम अ द फिल्म क्यों हो गया ना, एन इट इज अख्तियार दूर विवेक ओबेरॉय एन ऐश्वर्या राय दी तैयार वारे से आन इट डेटे। Uit de film Want It komt het volgend liedje via Radio SBS, gezongen door Wajid en Amrita Kuk. Just love me, love me, love me.

कितना प्यार करते हैं तुमको सनम, मेरे दिल से पूछो ना। आपने सुना फिल्म बनारस से हिमेश रेशमिया की आवाज में। और अब आप सुनिए सुनिधि चौहान की आवाज में अगला गाना प्रोग्राम रेडियो SBS का। फिल्म धूम 2 से आप सुनिए क्रेजी क्यारे।

मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है वाज आउट द फिल्म आशिकी एंड इज गेजोंग डोर उदित नारायण एन अनुराधा पौडवाल। Het volgende liedje in het programma Geet om Killeher is gezongen door Nawazuddin Siddiqui. Uit de film Bole Churiya Kom Swaggy Churiya.

मुझे साजन के घर जाना है, इसका सॉन्ग और अलका याचिक, सोनू निगम एंड जसपिंदर ने रूला एंक वाम आई द फिल्म लज्जा. Het volgende liedje in het programma Gieton Kelleher via Radio SBS is gezongen door Sunidhi Chauhan en KK. Uit de film Bas Ik Pal komt Ashk Bhi Muskuraye.

0: छोटे मियाँ लाइव इन कॉन्सर्ट उदित नारायण एंड आदित्य नारायण फादर एंड सोन सामन लाइव ऑफ हेट पोडियम बिलीव एन अनवर्गेटलिके अवंड फुल इकोनिसे बॉलीवुड हिट्स प्राचीन म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट फ्रॉम टॉप निवो
1: रुक जाओ दिल दीवाने
0: संडे 15 नवंबर संडे 15 नवंबर इन रोटरडम अहोय RTM स्टेज टू जनरेशंस एन पोडियम एन अनवर्गेटलिके अवंड मिस deze spectaculaire live concertavond niet en koop nu je ticket via i-tickets.com. Raga Events proudly presents Baremia Chote Mia live in concert Udit

लीना और लीना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में फिल्म स्वर्ग नरक से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों की लहर में है महबूबा महबूबा फिल्म अजनबी से।

सोना नहीं चांदी नहीं यार ना मिला, अरे प्यार कर ले, इस द फिल्म शुक मंगल सावधान एंड इसके संग दर बप्पी लहरी आयुष्मान खुराना एंड आंद्रा। गाँव द फेदर मैट अव द फिल्म हम दिल दे चुके सिनम, हम दिल दे चुके सिनम, द टाइटल सॉन्ग दिस।

0: bandhen hai payal ne machaya shor was uit de film Mohabbate. Het volgende liedje is ook uit de film Mohabbate en het is Aankhe khuli ho ya ho band, didar unka hota hai. Kaise kahun main o yaara ye pyar kaise hota hai.
1: Ek ladki thi deewani si, ek ladke pe wo marti thi. Nazrein chuka ke, sharm aake, galiyon se guzarti thi. चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी. कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी. जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है. और मैं सिर्फ यही कह पाता था.

0: कैसा है जनाब का?
1: क्या ख्याल है आपका?
0: तुम तो मचल गए, हो हो हो,
1: यूं ही फिसल गए। आ, आ, आ।
0: अच्छा, फिसलने का अगला लोकेशन?
1: पिन भेज रहा हूँ, संभाल के चुप क्या चाहे।